0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फिलिपाइन में 6.3 शिद्दत के जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बुध के रोज़ फिलिपाइन के जनूबी साहल के करीब 6.3 की शिद्दत का जलजिला रिकॉर्ड किया गया है, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे और पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जलजिला मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:14 पर आया। इसका मरकज़ सारांगानी जजीरे से तकरीबन 32 किलोमीटर जनूब मगरब में और गहराई 62 किलोमीटर थी। जलजिले के बाद सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। मकामी इमदादी अहलकार हार्ली साउरू ने कहा है कि जलजिला उस वक्त आया जब सैकड़ों अफराद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली माली इमदाद वसूल करने के लिए जमा थे। उन्होंने कहा कि जलजिले के झटके काफ़ी शदीद थे, मैंने लोगों को घबराहट में भागते और चीखते हुए देखा। जलजिला उस वक्त आया जब मकामी इंतजामिया माली इमदाद तकसीम कर रही थी, इसलिए अदालत की इमारत में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से सब महफूज रहे। सारों ने मजीद कहा है कि हुकाम को किसी जानी नुकसान या बड़े पैमाने पर नुकसान की तवक्को नहीं है।
0: शुमाली कोरिया जापान के जदीद दो महाक क्रूज मिसाइल तजर्बे की मुजम्मत की और जापान को जंगी जराइम के मुर्तकब रियासत करार दिया। शुमाली कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के CNA के मुताबिक शुमाली कोरिया के सदर किम जू उंग की बहन किम यू जूंग ने आलमी बरादरी से अपील किया है वो जापान की जंगी दौर से बरकरार तोसी पसंदना सोच के हवाले से पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ने रहे। बरसर इकतदार वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की आला अहदेदार किम यू जोंग ने कहा है कि अब यह बात बिल्कुल वाजह हो चुकी है, इस किस्म के इकदाम दरअसल फौजी ताकत बनने की ख्वाहिश को छुपाने की हिकमत अमली है। किम यू जोंग का यह बयान जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के अमरीकी साख्ता टोमहाक क्रूज मिसाइल का पहला तजर्बा करने से चंद रोज बाद सामने आया है। वाजह है कि जापानी मुहारिब जंगी जहाज DDG-176JS चौकाई ने 29 जुलाई को पहली मरतबा एक टोमहाक क्रूज मिसाइल फायर किया था।
1: ट्रंप इंतजामिया ने ब्राज़ील की जानिब से गुज़िश्ता माह दो अमरीकी सफारतकारों को वीज़े देने से इनकार के जवाब में अमरीका में तैनात ब्राज़ील के सफीर का वीज़ा मनसूख कर दिया है। अमरीकी सफारतकार आइंदा इंतखाबात से कबल ब्राज़ील का दौरा करना चाहते थे। इसके अलावा ब्राज़ील ने ब्राज़ीलिया में सफीर के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा उम्मीदवार की मंजूरी में भी तख़ीर की थी। अमरीकी उमूर ख़ारिजा ने कहा कि मंगल को लिया गया ये फैसला ब्राज़ील के इकदाम का एक बाहमी रद्द अमल था। हुकाम ने बताया कि इस इकदाम में कई बार ताखिर की गई ताकि ब्राज़ील के सदर लुइस अनासियो लूला दी सिल्वा को अपने फैसले से पीछे हटने का मौका मिल सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ताहम हुकाम का कहना था कि अगर ब्राज़ील मुनासिब इकदाम करे और ट्रंप के नामजद करदा सफीर को कबूल कर ले तो इस फैसले को फौरन वापस लिया जा सकता है। बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले लूला का मुकाबला 4 अक्टूबर के इंतखाबात में सेनेटर फ्लाविओ बोसोनारो से होगा, जिनके वालिद माजी में ब्राज़ील के सदर रह चुके हैं।
0: क्यूबा के वज़ीर ख़ारिजा बोर्नो रोड्रिगेस पेरेरा ने मुल्क में बार बार मुल्क में बिजली की बंदिश का जिम्मेदार अमरीकी पाबंदियां करार दिया। उन्होंने चैनल एक्स पर बयान में कहा कौमी बिजली ग्रिड की बंदिश अमरीका की तरफ से क्यूबा के खिलाफ मुसल करदा नस्लकुशी की नाकाबंदी का बरह रास्त नतीजा है। बयान क्यूबा में बिजली के कौमी ग्रिड के बंद होने के बाद दिया गया जो हालिया महीनों में जजीरे के मुल्क बंद बिजली की सप्लाई में खलल डालने वाली बड़ी बंदिशों के सिलसिले में ताज़ा तरीन है।
1: और अब नाम हरमूज के दोबारा खुलने की तवक्कात ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में शदीद कमी कर दी है। अमरीकी सीनियर हुकाम की जानब से अहम तरीन आबनाए हरमूज को तरसील के लिए दोबारा खोलने से मुतालिक पेशरफ्त का ऐलान किए जाने के बाद ब्रांड क्रूड की फी बैरल कीमत 5% कमी के साथ $80 से नीचे आ गई है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ओमान की सालसी में जारी सफारती राबतों से मुस्बत इशारे मिलने का इजहार करते हुए कहा कि बहुत जल्द कोई माहदा तय पा सकता है, तहम सफारती सतह पर तहरीक के बावजूद ईरानी मौकफ मुहतात है। तहरान ने इंतजामिया इस बात को दोहराती है कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त रबता कायम नहीं हुआ है, मुजाकरात ओमान के जरिए हो रहे हैं और वह फौजी धमकियों के साय में किसी माहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुई।

आपका मोबाइल फोन, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, चक्कर काटने वाले विंड टर्बाइन्स, इन सब के मुश्तरक इसार नायाब जमीनी अनासर हैं। तुर्किया इस मैदान वर्ल्ड लीग में शामिल है, तो इस हवाले से हमारी इस्तेदाद क्या है? हाई टेक्नोलॉजी की नायाब जरूरियात, तो आइए शुरू करते हैं। सामिन, आज हम जदीद टेक्नोलॉजी के नागजीर अज्जा या नायाब जमीन नासर के बारे में बात करेंगे। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, विंटर बाइन से लेकर दिफाई सनत तक के मुतद शोबों में इस्तेमाल होने वाली अनासर असराजे की टेक्नोलॉजी की बुनियादी जरूरियात में शामिल है। ताकतवर मकनतीस बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली अनासर आम सतह पर खास तौर पर ग्रीन एनर्जी के रुझान, डिजिटलाइजेशन के उरूज के साथ आम सतह पर कहीं ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हाल तुर्किया के मालिक होने सलाहित को भी ऊंचा कर सकती है। दरहकीकत वजीर पर तवानाई कुदरती वसायल अल अरसलान बायरक्तार का बयान कि हम नायाब जमीन अनासर के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल होंगे, ये इस मैदान के अहताफ का मजर है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी चरापाशा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में शुबा माइनिंग इंजीनियरिंग की सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर इल्गिन कुर्शुन नायाब जमीनी अनासर में तुर्किया के वसायल के बारे में टीआरटी खबर चैनल को आगाही कराई है। यह नायाब इस्तलाह वो नहीं है जो आपके जहन में है। नायाब जमीन नासिर के नाम पर इस्तेमाल नायाब को अक्सर गलत समझा जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर इल्गिन कुर्शुन इस बात पर जोर देती हैं कि इस्तेमाल बहुतात से मुतल्लिक नहीं। जमीन के नायाब अनासर को नायाब कहे जाने की बुनियादी वजह जमीन की करस्मिंग की कम कसरत की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी तश्कील के अमल की वजह से है। यानी कश धातों में पाए जाने वाले नायाब जमीन अनासर के इंतहाई पेचीदा ढांचे हैं, जिनके इक्तसादी असरात होते हैं। नतीजतन इनको प्रोसेस करना एक कठिन और तवील अमल है। हाईटेक पैदावार में अहम किरदार। हकीकत यह है कि नायाब जमीन अनासर कीमियावी तौर पर एक दूसरे से काफी यकसानी के हामिल हैं, जो कि मुतद तकनीकी मसाइल का मोजब बनते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कुर्शुन का कहना है, ताहम नायाब जमीनी अनासर की एक दूसरे से मिलती जुलती कीमियाई खसूसियात की वजह से इन अनासर को एक दूसरे से जुदा करने की तकनीकी दुश्वारी असरा जमीन अनासर की प्रोसेसिंग में एक संजीदा सतह का चैलेंज है। नायाब जमीन नासिर को खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की मसनूआत में नागजीर कबूल किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर कुर्शुन नासिर को स्ट्रेटेजिक अंसर के तौर पर क्यों परखा जाता है कि वजाहत

कुछ यूं की है। नायाब अर्थ मेटल्स खासतौर पर लेंथाइनाइड्स जैसे न्यूडियम, प्रोसियोडीमियम, डेस्पोरोसियम और ट्रिबियम के साथ साथ एट्रियम और स्कैंडियम की अहम स्ट्रेटेजिक हामादे के तौर पर तशरीह की जाती है, जिसकी वजह अला कारकर्दगी वाली तकनीकी मसनूआत की पैदावार में तेजी से बढ़ती हुई आलमी मांग, ग्रीन एनर्जी की जान मुंतकली और डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इन्हें मौजूदा दौर की संतों के लिए कलीदी तीन खाम मादों के तौर पर माना जाता है। नायाब ज़मीनी अनासर का इस्तेमाल काफी वसी पैमाने का है, तहम खास तौर पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स जैसे डिवाइस, बर्की गाड़ियां और विंड एनर्जी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। आलमी सतह पर नायाब ज़मीनी अनासर के ज़ाहिर बुनियादी तौर पर चीन, वियतनाम, ब्राजील, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस में मौजूद है। चीन, जिसके पास तकरीबन 120 मिलियन टन के आलमी ज़खायर का तकरीबन 35% है, ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और बरामद करिंदा भी है। दुनिया के नायाब ज़मीनी अनासर की कुल पैदावार का तकरीबन 70% चीन पैदा करता है। तुर्की के नुमाया मदनी इलाके। तुर्की में नायाब ज़मीनी अनासर पर तहकीक पहली बार 1950 की दहाई के आखिर में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ने शुरू की। इस अरसे के दौरान मुख्त इलाकों में काबिल जिक्र मदनियात की निशानदही की गई। आइए कि तुर्की के कौन से इलाके नायाब ज़मीनी अनासर के इतबार से खुशकिस्मत हैं। तुर्की के सबसे अहम नायाब ज़मीनी अनासर के ज़ाहिर में से एक एस्की शहर कज़लजा उरैन इलाका है। प्रोफेसर डॉक्टर कुर्शन सखीरे पर तवज्जो मौसूल कराते हुए मुंदरजा ज़ैल मालूमात फराहम की हैं। एस्की शहर कज़लजा उरैन इलाका तुर्की में नायाब ज़मीनी अनासर के सबसे बड़े ज़ाहिर के साथ साथ पेश है, जिसमें पस्टाना साइट, फ्लोराइट और बाराइट मदनियात मौजूद है। कज़लजा उरैन साइट में सेरियम, लेंथियम, न्यूडीमियम, नायाब अर्थ मेटल्स ऑक्साइड्स की शक्ल में मौजूद हैं, जबकि खत्ते में पायलट पैमाने पर पैदावारी तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई हदफ में लेंथियम, सेरियम, प्रोसियोडीमियम और न्यूडीमियम अनासर की पैदावार है। प्रोफेसर कुर्शन मुख्त खत्म इम्कान की तरफ इशारा करते हुए अपनी बातचीत को नुकता पजीर किया है। हमारे मुल्क में एक मुमकिन नायाब ज़मीनी अनासर के ज़खायर में से एक स्पार्टा चनाकल में है। मलातिया खुलंजा के इलाके में मौजूद नायाब ज़मीनी अनासर की मदनियात में लेंथियम, सीरियम, प्रोसियोडीमियम, न्यूडीमियम, एट्रियम और थोरियम अनासर शामिल हैं। ये वाजह है कि तुर्किया नायाब ज़मीनी अनासर में नुमाया सतह की इस्तेदाद का हामिल है। वो इस मैदान में आलमी लीग में अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। हमारी अगली पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।